भगवान बुद्ध, किरातेश्वर महादेव, महारुद्र, भीम राणेश्वर आदि भगवान को एक शिला सहर्ष अवतार को रूप में पूजिने भीमेश्वरलाई आफ्नो विधि अनुसार पूजा पाठ गर्दा तपसिल का विषय में ध्यान दी आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न गराउन हुन सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

वो जिद समझ बैठे। अब कैसे समझाऊं उन्हें कि जिद होती तो कब की पूरी कर चुके होते, जिद होती तो कब की पूरी कर चुके होते, वरना यूं उनके प्यार में मरते थोड़ी ना रहते, यूं उनके प्यार में मरते थोड़ी ना रहते।

विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य और कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।